जवानों में ताकत भी आई, जो ताकत भी आई तो जुरात भी आई, मोहम्मद जो आए तो रहमत भी आई, जो रहमत भी आई तो दौलत भी आई, जो दौलत भी आई तो बरकत भी आई, जो बरकत भी आई।

जिसने देखी एक झलक रुकी वो शैदा हो गया, एक नजर पड़ते ही हर बीमार अच्छा हो गया। कैसा ही तूफान हो लेकिन पार बेड़ा हो गया। या मोहम्मद उसका हर गम से कनारा हो गया कि जिसके सर पर आ

गुनागारों की बख्शिश की कोई सूरत न थी, करबला में लाज रख ली आपने ईमान की। बख्शिशे उम्मत पे जब शर्ते शहादत लग गई, मरहबा ए फातिमा के लाल हुसैन इब्ने अली, दे दिया सर।

स्वप्न वाली है वही जो साहिबे मेराज है, जिसकी नालैनी मुबारक अर्श की सरताज है। गम के हाथों मेरे मौला जिंदगी का राज है, एक नजर की हस्ती इबरत फकत मोहताज है, कि तुमने जिस कतरे को

0: छुटकी कहीं की, अपने आप को बहुत चला।
1: देखो रवि, बर्दाश्त की भी हद होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे छुटकी मत कहा करो, अब मैं छुटकी नहीं हूं।
0: अरे मैं तो अब तक बेखबरी था। सच कहती हो पंजाब की रेशमा, अब तुम छुटकी नहीं रही।

0: एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त करा कंदरा उपजित दूषण पर प्रधान हो तो काक चेष्टा बकोना ध्यान अमर स्वान निद्रा अवश्य प्राप्त हो सकते हैं। नमस्कार।
1: मैंने दूरदर्शन में सुना है।

0: माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और मैं और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
1: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
0: सुना।
1: अर्ज है, दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे,

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

इसे देखो, दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: योर लाइफ योर म्यूजिक योर 89.1 FM NTN रेडियो।
2: Vindhya Prasad, Monday to Friday, 9 a.m. for Sanskar, a refreshing blend of music, virtues and values, culture and tradition, positive and inspirational thinking. Sanskar, brought to you on 89.1 FM.

अनुसार ये पता चला है कि 50 करोड़ की रकम एक चटनी की गोनियों में छुपा कर MJ गाड़ी में रखी गई। और मजे की बात ये है, ये कैश जिसे मिला वो पैसा उसका।

0: Roll camera and action!
1: आदि वो लोग कुछ शूट कर रहे हैं।
2: हमारे बिना शूटिंग ऐसे कर रहे हैं।
3: ये तो अपना गाना। या कम ऑन। बाल की शूटिंग हमारे बगैर।
4: आके तेरी मार दिया फेरे कुड़ी, मोड़ने चाहिए तो कैसे फेरे कुड़ी।